हाउ ना बज अ फूल आउट हाउ ना कर अ फूल आउट हाउ ना जस अ फूल आउट हाउ ना लिफ्ट उसको बोलता ना ऐ सेगा फेली ले।